0: उसका कानूनी पहलू क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है। ये सरकार जिस तरह से, जिस राह के ऊपर सरकार चल रही है, उस राह के ऊपर जवाब सरकार दे सकती है।
1: ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, जो लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यसूपों पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतिंगा पर नहीं मारेगा, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कार्यसूपों के तप तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा था तो कहते थे सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया।
2: 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने, पूरे सिंधी समाज ने, पूरे हिंदू, आई मीन नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की, आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही। दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी, उन्होंने अयोध्या बुलाया, तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग, बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। 6 साल हो गए थे, ये तो टीवी के ऊपर न्यूज़ देखी तो हमें पता चला। तो
3: मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है?
2: जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है।
4: On that note, let's bring you the latest update from West Bengal now. Political controversy has erupted in Kolkata after the Kolkata Municipal Corporation renamed Surawardi Avenue as Gopal Mukherjee Road. The state government has hailed the move as a historic correction. In fact, Shuvendu Adhikari, the chief minister, said the name change rectifies a long-standing historical wrong and honors Gopal Mukherjee for protecting Hindus during the Calcutta riots. However, the opposition has accused the government of distorting history. You see, the Trinamool Congress argues that the avenue was named after noted physician and former Calcutta University Vice Chancellor Hassan Surawardi and not Hussain Shaheed Surawardi, the controversial former Premier of Undivided Bengal. Meanwhile, the Congress has also accused the West Bengal government of confusing two different Surawardis.
5: सारे बदलेगा, जैसा कि ब्रिटिशों के नाम पर जो नाम था वो बदल दिया गया है और बाकी जो है, जो देश का विरोध किया है ऐसे और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए।
6: देखिए, जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो इसका कारण था।
7: सुराबुर्दी तो पश्चिम बंगाल में दंगा कराया, सुराबुर्दी पश्चिम बंगाल का हालत खराब किया, इसीलिए ऐसा सुराबुर्दी नहीं चलेगा। जो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जनता को बचाया वही गोपाल मुखर्जी, जिसका नाम इतना दिन छुपा के रखा था कांग्रेस कम्युनिस्ट ने, गोपाल मुखर्जी नहीं होता 10,000 जो हिंदू मारे गए, वो कम से कम 40,000 हिंदू का मौत होता। गोपाल मुखर्जी उसका सारे क्लाब का वाहिनी लेके उन लोगों ने जो दंगा से रक्षा कराया हमारा माता बहन को, जनता को, इसीलिए हिंदू बचा।
4: ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अदर न्यूज़ वी आर ट्रैकिंग। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे स्कूल पार्टी वर्कर्स इन कर्नाटका हु चांटेड डीके डीके एट एन इवेंट हेल्ड टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ द पार्टी स्टेट चीफ्स रोल फ्रॉम चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार टू बीके हरिप्रसाद। इन फैक्ट ही आल्सो रिमार्क्ड एट अ कांग्रेस इवेंट इन बेंगलुरु, Mr. Kharge called his own cadres useless fellows, and in the same event, former Chief Minister Siddaramaiah has objected for making him the last speaker. You see, during Mr. Kharge's address, Congress workers started raising DK Shivkumar slogans, which seemed to have angered Mr. Kharge. He said, and I quote, "Keep quiet, sit down," and then he called some of the workers useless fellows. At the same event, objecting to speaking last, Mr. Siddaramaiah requested the state Congress chief not to make him

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks, and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are

0: NEET examination, which was being monitored at the highest level, at every level rather, right from the Delhi to the NET, which conducts the examination, to all the state authorities, the central government, the education department, and the district administration. They were all involved in this entire process. But still, this impersonators gang actually made an attempt to break through it, and to an extent, they even managed to get through it. So that is something which should concern the authorities which are involved in this conducting of the examination, as to how this glitch was discovered by this particular gang and how they were able to manage. And remember, the police is confirming to us that it's not only the gang actually, but there are also people involved in this process, this entire process, right from the center in charges to the invigilators. So there has to be some insider involvement to be able to actually break through, or to be able to make an inroad into this much hype examination. Only then they will be able to succeed. So those people are also being tracked by the Bihar police. The special team has been formed, and very soon they will be behind bars.
1: Right. So impersonators clearly penetrating this high security re-examination. Thank you for getting those important details, Prabhakar. We'll shift our focus now. The Ayodhya Ram Temple donation controversy is deepening. Special investigation team probing Ayodhya Sri Ram Temple matter met Chief Minister Yogi Adityanath and submitted its preliminary report on the seventh day of the investigation. The SIT had spent 6 days conducting inquiries and gathering information in Ayodhya before presenting its initial findings to the Chief Minister, while trust officials and temple functionaries have reportedly been asked not to leave the city. Investigators are examining allegations linked to donations, missing jewellery, land purchases, procurement processes and financial transactions. As political sparring intensifies, the focus remains on whether the government can uncover the truth behind the allegations and fix accountability.
2: ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ನಾಮ ಜಪೋ ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನಾ, ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ.
3: ದೇಖಿ, ಯೋಗಿ ಜಿ ನೆ ಕಲ್ ಸಾಫ್ ಸಾಫ್ ಕಹಾ ಕಿ 15 ದಿನ ಕಾ ಸಮಯ ಮಿಲೇ सारी जांच करके जो भी दोषी होगा वो जनता के सामने हम ले आएंगे, ऐसा योगी जी ने कहा. एक बार मुख्यमंत्री हैं, वो विश्वास करना चाहिए. एसआईटी का गठन हुआ है.
4: जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है. लोगों को बहुत ठेस पहुंची है. प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते. लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी. सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा. सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो.
5: कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं किसके सर पर गड़ा फूटेगा. भगवान के घर चोरी हुई है. भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए. लोगों की आस्था के ऊपर चोट है. ये सरकार की माया है. ये सरकार जाने ये क्या कर रही है, और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के. उसका कानूनी पहलू क्या है ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है. ये सरकार जिस तरह से, जिस राह के ऊपर सरकार चल रही है, उस राह के ऊपर जवाब सरकार दे सकती है.
6: ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, जो लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यसूपर पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतिंगा पर नहीं मारेगा, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कार्यसूपर के तप तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा था कहते सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया।
7: 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने पूरे सिंधी समाज ने, पूरे हिंदू, आई मीन नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की, आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही। दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी, उन्होंने अयोध्या बुलाया, तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग, बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। 6 साल हो गए थे ये, तो टीवी के ऊपर न्यूज़ देखी तो हमें पता चला। तो
8: मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है?
7: जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है।
1: With that, we'll slip in a short break. More updates coming up on the other side. Stay tuned.

0: मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन. आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा, मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेलो आहे. विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाहीये, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाहीये आणि पुढेही कधी वागणार नाहीये. मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही. विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तशी त्याची काही काळजी करू नका. पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत. माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू. संविधानिक बोला, तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा. मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला.
1: छे बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे. वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है. आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके. उनको दो तिहाई जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है.
2: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है. पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए. हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे.
3: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है, शिवसेना में प्रवेश करे शिवसैनिक है. और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी हमारे जो मुख्य नेता है DCM है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है. कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी. बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी.
4: आणि आता हे दोषी तुटायचे नाही पडालं. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही घर अजून आपले पक्षाचे प्रामाणिक आहेत काही नाही, काही घर सांगता ही दोषी तुटायची नाही, काही घर सांगता थांबायचं नाही.
5: पैसा बीजेपी के पास है 85 करोड़, अगर आप एक एक सांसद को वहां पे दोगे तो कुछ ऐसे सांसद वो नहीं जाते, कुछ ऐसे सांसद वो बिक जाते. तो यहाँ पे 6 लोग बिक गए, पैसा ले लिया और उसी के साथ उनके बहुत अलग अलग केसेस भी है, वहां पे भी दबाया जाता है. सब जगह से दबाने के बाद ये लोग झुक जाते हैं. अभी उन्होंने अगर डिसाइड किया होगा हम झुकने वालों से है तो वो झुकेंगे, हम तो झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं.
6: तोड़ोफोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोरकर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है. लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है. 2029 में इनको पनिशमेंट मिलेगा और इनको सत्ता के बाहर जाना ही पड़ेगा. इस देश की जनता इनको सत्ता के बाहर करेंगे.
7: जहां कमल नहीं खिल पाता वहां पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़. तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400-400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए. उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने MP खरीदे जा रहे हैं. क्यों खरीद रहे हो साहब, क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके MPs भर लूं. जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं.
8: Well, yesterday, Chief Minister Fadnavis said that Operation Tiger, well, it's complete, and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, he reaffirmed the success, in fact, of Operation Tiger. But Uddhav Thackeray, well, he hits back at the Mahayuti. Listen in.
9: लवकरच तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल.

0: Going against party lines there, but very quickly, let's just listen into the reactions coming in. You got latest reactions by Arun Govil and Mukhtar Naqvi, which have just come in. Take a look.
1: How you see normalcy here in Jammu and Kashmir when you had been here now? कैसा लग रहा है आपको सिचुएशन?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. दिनों दिन इतना काम हो रहा है यहाँ पर. हम पहले भी आए हैं, पहले बहुत पहले आते थे जब शूटिंग्स होती थी यहाँ पर. उसके बाद फिर भी आए, अभी बहुत अच्छा हो रहा है. एवरीथिंग इज गुड.
1: अच्छा सर, एक चीज़ पूछना था. हाँ. शशि थरूर जी ने कल गए थे, वो लोकभवन गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे नॉर्मलसी है, तो कांग्रेस वाले ही उन पर पड़ गए कि आप आम आदमी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप तो लोकभवन में जाके कह रहे हैं नॉर्मलसी है, तो हाउ यू रिएक्ट टू दिस थिंग?
2: कांग्रेस तो हर अच्छी चीज़ में पड़ जाती है, बस उसकी आदत हो गई है.
3: कांग्रेस की एक दिक्कत है, उसकी जमीन तो बंजर हो गई है लेकिन अभी भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है. अब उनका जो है वो अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर. अरे भाई, थरूर भी आपके हैं और उनका सुरूर भी आपका है, क्यों उस पर जो है वो कंफ्यूजन का जो है वो कोड़ा चला रहे हैं?
0: And well, with that, it's time we step into a short break. Viewers, news and updates continue on the other side.

0: हमारे गांव में, उतना कुछ ही नहीं कर सकते हम हीरो
1: क्यों नहीं
0: हीरोइन
1: कर सकते? क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, ऐसा
0: क्या,
1: आपका कहना है?
0: फंड ही नहीं आता ना, फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोग।
1: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है, और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं।
0: नहीं, उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है। अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी, लोग बोलते हैं कि आप विकास करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे, लोगों को ऐसा समझाएंगे।
1: लेकिन
0: लोग
1: नाराजगी किसी,
0: विकास के लिए
1: संजय दादा, नाराजगी किस
0: नाराजगी
1: बात
0: किसे,
1: को लेकर थी?
0: नहीं, नाराजगी नहीं किसी के वोट,
1: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया, ऐसा आरोप शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप
0: नहीं,
1: पे
0: ऐसा कोई दबाव
1: एजेंसीज का दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया?
0: नहीं, हमारे क्या, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, क्या एजेंसी के दबाव में।
2: आज सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय की शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत।
3: विनंती करणार आहे की माझ्या सोबत राहा, मला जशी पहिली साथ दिली तशी आताही साथ द्या, आणि मी तुम्हाला कुठेही नाराज करणार नाही। मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून गेलो, मी कार्यकर्त्याचा विचार करून गेलो, मी पदाधिकाऱ्याचा विचार करून गेलो, मी सगळ्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन, मी सगळ्याला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करीन, मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन। आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा, मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेला आहे, विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाही आहे, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाही आहे आणि पुढेही कधी वागणार नाही आहे। मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही। विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तशी त्याची काही काळजी करू नका। पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत, माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू, संविधानिक बोला, तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा। मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला।
4: छह बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे, वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे वो जो चुन के आए थे, वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके, उनको दो तिहाई जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है।
5: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे।
6: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है, शिवसेना में प्रवेश करे शिवसैनिक है, और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी हमारे जो मुख्य नेता है डीसीएम है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
7: आणि आता हे दोषी तुटायचे नाही पडालं, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही वेळा अजून आपले पक्षाचे प्रामाणिक आहेत काही नाही, काही जण सांगता ही दोषी तुटायची नाही, काही जण सांगता थांबायचं नाही।
8: ऐसा बीजेपी के पास है 85 करोड़, अगर आप एक एक सांसद को वहां पे दोगे तो कुछ ऐसे सांसद वो नहीं जाते, कुछ ऐसे सांसद वो बिक जाते, तो यहाँ पे 6 लोग बिक गए, पैसा ले लिया, और उसी के साथ उनके बहुत अलग अलग केसेस भी है, वहां पे भी दबाया जाता है, सब जगह से दबाने के बाद ये लोग झुक जाते हैं। अभी उन्होंने अगर डिसाइड किया होगा हम झुकने वालों से, तो तो वो झुकेंगे, हम तो झुकने वालों में से नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।
9: तोड़ो फोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है, उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। 2029 में इनको पनिशमेंट मिलेगा और इनको सत्ता के बाहर जाना ही पड़ेगा। इस देश की जनता इनको सत्ता के बाहर करेंगे।
10: जहां कमल नहीं खिल पाता वहां पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400-400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब? क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी? या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं।
11: Alright, the opposition hitting out over the switching of the MPs. Yesterday, Chief Minister Fadnavis, however, said that Operation Tiger, as this entire episode is being referred to, is complete. And Eknath Shinde reaffirmed the success of the operation, while Uddhav Thackeray hit back at the Mahayuti. Listen in.
12: लवकरच तुम्हाला breaking news मिळेल. आम्ही operation अर्धवट करत नाही, फुलफुट करतो।
13: ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे।
14: शिवसेना प्रमुख एकच होऊन गेले, पुन्हा दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, अजिबात होणार नाही। तुझा कोणतरी कुठला तरी पडलेला माणूस उचलून आणून तू तिकडे बसला, जसा तू बसला होता अध्यक्षपदी, तसं आज कोणतरी ध्यान बसवलंय। भाजपाला कोणी अध्यक्ष चालतो, पण शिवसेना प्रमुख हे एकमेव, दुसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही, लोक स्वीकारणार नाही। शिवसेनेचा प्रमुख कोण हा उपरा ठरू शकत नाही, तू उपरायस, तू उपटसुंब आहेस। त्याच्यामुळे तू तुझ्या अवकाशात राहा, त्यांनी त्यांचं घर सांभाळावं। जर त्यांना पंतप्रधान पदाची स्वप्न बघत पडत असतील आणि म्हणून ते दुसऱ्याचे खासदार बोलून स्वतःचा खुंटा भडकात करत असतील, तर तुमच्या खुंट्याला पहिले मुळायचा बघा।
11: All right, some breaking news now coming in from Karnataka on the NEET re-exam that took place. And the Karnataka government will be forming a panel to probe the NEET exam row. This is after several students missed their exam because they arrived late at the exam center. Remember, it's become a huge controversy. Visuals of the students crying also went viral. Karnataka Congress chief has said the students' issue will be reviewed and he says ready to assist students. So hopefully some relief for those students who missed their exams. They were late and they blamed the traffic, the BJP. Remember, it's also become political with the BJP accusing the Congress event for delaying the students and causing the traffic jam.
15: The exit master of Bangalore, he makes vague allegations on Congress party. According to the reports, only 3 students have faced this problem. I just, if there is any kind of hardship which our children have faced, my deepest regrets are there. But at the same time, I would like to question the Bharatiya Janata Party, what they have done to these children. Thrice the NEET question papers have been leaked.
11: All right, the Congress, they're saying that they will look into the issues involving these 3 students who arrived late for the NEET re-exam. You can see the visuals of them there. They were not allowed to take the exam and you could see them crying and absolutely stricken and in anguish. And this has caused a huge uproar. And now the BJP there in Karnataka has said it is because of a Congress event that was being held yesterday. It caused further traffic jams already. Remember, Bangalore traffic is notorious for these long traffic jams, and the BJP accusing the Congress of further worsening the situation. The Congress denying this, however, saying that they will form a committee that will look into all these issues.

0: कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सोहरावर्दी साहब, प्रथम मुस्लिम वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जब वो बने, उनका विरोध हुआ। उस वक्त जो समर्थन में उतरे थे उनके, वो दो लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जाके सड़क का नाम बदल दिया, कंफ्यूज हो गए कौन से सोहरावर्दी, ये तो सरकार चला रहे हैं ऐसे जाहिल लोग।
1: उनका काम है सवाल उठाना, उठाने दो। सोहरावर्दी हमारा कौन लगता है? सोहरावर्दी हमारा अब्दुल सर अब्दुल कलाम आजाद के अब्दुल कलाम साहब के नाम में रखिए, अबुल कलाम आजाद के नाम में रखिए, वो अलग बात है। लेकिन ये सोहरावर्दी हमारा कौन लगता है, उसके साथ हमारा कौन सा रिश्ता है? और गोपाल मुखर्जी ने हमारा शहर को बचाया है, सही नाम चुना है, सही नाम को निकाला गया है।
2: सारे बदलेगा, जैसा कि ब्रिटिशों के नाम पर जो नाम था वो बदल दिया गया है, और बाकी जो है जो देश का विरोध किया है ऐसे, और सांप्रदायिक तत्व जो डिवीजन किया है, उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए।
3: देखिए, जब कोई नाम होता है ना, उसका पीछे कोई हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट ये होता है। एक बार नाम पूरा चेंज कर देना, जिसका नाम पे रास्ता नई तरह से रखना है वो तो हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम जब हटाने का बात आता है तो पूरा इरेज करने से ये हिस्ट्री का ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। पास्ट को तो जानना चाहिए, जब नाम रखा गया था कोई ना कोई तो उसका कारण था।
4: सोहरावर्दी तो पश्चिम बंगाल में दंगा कराया, सोहरावर्दी पश्चिम बंगाल का हालत खराब किया, इसीलिए ऐसा सोहरावर्दी नहीं चलेगा। जो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जनता को बचाया वही गोपाल मुखर्जी, जिसका नाम इतना दिन छुपा के रखा था कांग्रेस कम्युनिस्ट ने। गोपाल मुखर्जी नहीं होता 10,000 जो हिंदू मारे गए, वो कम से कम 40,000 हिंदू का मौत होता। गोपाल मुखर्जी उसका सारे क्लाब का वाहिनी लेके उन लोगों ने जो दंगा से रक्षा कराया हमारा माता बहन को, जनता को, इसीलिए हिंदू बचा।
5: Well, let's go across to Shreshi now for more on this entire story. And Shreshi, the BJP hailing this move as a, you know, a correction, long needed correction, but the opposition pointing out that they're confusing the Sohrawardi, saying this is not after the person who's involved in riots, but actually the road was named after a noted physician and former Calcutta University Vice Chancellor.
6: Well, this is the first name change under the BJP-led West Bengal government here in Kolkata. And of course, this change also ushers in a reshaping of Kolkata's history as well. While, you know, people have been divided and has sparked a debate over who this Sohrawardi is, but there is a link that is there with the Calcutta killings, the nephew who had spearheaded that. But of course, the BJP has given its reasons for renaming it after Gopal Nath Mukherjee, calling him a Hindu savior during the 1946 direct action day here. But of course, critics are divided, while one half is saying that this is an attempt to ideologically rewrite history of the state. On the other hand, people have said that, you know, Gopal Patha, as he was famously known, had not got due credit for the work he did during the Calcutta killings and how he safeguarded the Hindus, and this is the right way of giving him his place of honor, while also changing a colonial era road. This road was named in 1933, but more popularly known as Park Circus. Gargi, however, amidst all of this debate and political slugfest that is opening out here in the state, on the other hand, the regular people who commute through these roads usually stick to the colloquial term and call it Park Circus. Seldom we see official names being used in a day-to-day life. Only when it comes to official work is when the official roads are really, you know, remembered. But otherwise, it's popularly known as the Park Circus area of the city.
5: All right, Shreshi, making an important point there, what it means for the common man. Thanks so much for joining us with all those developments. With that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: क्या वो स्थापित पुनर्स्थापन हो गया उनका? ये सारे सवाल हम सबके मन में है और मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर थरूर सबसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना मंतव्य भी बदलेंगे। मैं पूरा भरोसा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी, मुझे भरोसा है वो करेंगे ऐसा।
1: उनके ऊपर उम्र हावी हो गई, विचारों के ऊपर उम्र का तकाजा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है।
2: You see normalcy here in Jammu and Kashmir when you had been here now. कैसा लग रहा है आपको सिचुएशन?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दिनों दिन इतना काम हो रहा है यहाँ पर। हम पहले भी आए हैं, पहले बहुत पहले आते थे जब शूटिंग्स होती थी यहाँ पर, उसके बाद फिर भी आए, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड।
2: अच्छा सर, एक चीज़ पूछना था। हाँ। शशि थरूर जी ने कल गए थे, वो लोकभवन गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे नॉर्मलसी है, तो कांग्रेस वाले ही उन पर पड़ गए कि आप आम आदमी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप तो लोकभवन में जाके कह रहे हैं नॉर्मलसी है, तो हाउ यू रिएक्ट टू दिस थिंग?
3: कांग्रेस तो हर अच्छी चीज़ में पड़ जाती है, बस उसकी आदत हो गई।
4: कांग्रेस की एक दिक्कत है, उसकी जमीन तो बंजर हो गई है लेकिन अभी भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है। अब उनका जो है वो अपनों पे सितम, गैरों पे करम, जाने वफा ये जुल्म न कर। अरे भाई, थरूर भी आपके हैं और उनका सुरूर भी आपका है, क्यों उस पर जो है वो कंफ्यूजन का जो है वो कोड़ा चला रहे हैं?
5: दिस टाइम डॉक्टर थरूर आफ्टर हेलिंग इंडियाज पोजिशन ऑन द सेलर्स इशू ऑन ऑपरेशन सिंदूर, saying that no, India did not surrender, he has contradicted Congress's Rahul Gandhi's propaganda narrative on Kashmir and has said that Kashmir is moving and progressing towards normalcy. He has hailed what has happened in Kashmir, but Congress as usual has issued a fatwa against him. This is the intolerance towards anybody who puts not family first but nation first. If Dr. Tharoor stands for the Operation Sindoor, if he hails India's diplomatic prowess and exposes what Congress is lying about on the sailors issue, or if he hails what has happened in Kashmir after removal of Article 370, Congress becomes red-faced and angry.
6: बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने कहा कि राजभवन या जिसको हम आप लोक भवन कहते हैं उसके अंदर तो नॉर्मलसी है, चूँकि वो वहाँ गए हैं, जब वो लोगों से मिलेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह की नॉर्मलसी है इस वक्त। और मैं शशि थरूर साहब जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, उनको शायद किसी ने सुनाया नहीं होगा कि पुंछ रजौरी में पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन शेरांवाली चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
7: And earlier, Khera and Tharoor had clashed after Tharoor's remark on Prime Minister Modi. The row began after Tharoor praised Modi's firm messaging on maritime security and deaths of Indian sailors during interactions at the G7 outreach session. Khera responded sarcastically, suggesting that Tharoor was hearing statements that did not appear in the official record and accusing him of excessive admiration for the Prime Minister. Listen in.
8: No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement. But I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of three Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump?
9: Has there been any question asked by you for him?
8: No, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important.
7: Let's shift our focus now. The Ayodhya Ram Temple donation controversy is deepening. Special investigation team probing the Ayodhya Shri Ram Temple matter met Chief Minister Yogi Adityanath and submitted its preliminary report on the seventh day of the probe. The SIT had spent 6 days conducting inquiries and gathering information in Ayodhya before presenting its initial findings to the Chief Minister. While trust officials and temple functionaries have reportedly been asked not to leave the city, investigators are examining allegations linked to donations, missing jewelry, land purchases.

0: साल से हम उसके पीछे लगे हैं, बहुत सालों से वो प्रोजेक्ट चालू है, 15 साल से प्रोजेक्ट चालू है
1: जी।
0: उसके बाद में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पे है।
1: हाँ।
0: उसके बाद में विकास निधि लोगों का क्या है कि 2200 गांव है लोकसभा में, अब 2200 गांव के लोग आते हैं, वो बोलते हमको फंड दो, हमारे गांव में ये करो, हमारे गांव में वो, कुछ ही नहीं कर सकते हम।
1: क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास फंड नहीं, ऐसा आपका कहना है?
0: फंड ही नहीं आता ना, फंड देते ही नहीं ना विरोधी पक्ष के लोगों को।
1: और आप लोगों को ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है, और आप लोग जो चुनाव जीते हैं आप उन्हीं के चेहरे पे जीते हैं, उद्धव ठाकरे के चेहरे पर और शिवसेना यूबीटी के सिंबल पर जीते हैं।
0: नहीं, उद्धव जी के बारे में हमारा कुछ भी बोलना नहीं है। अब वो कैसा है कि लोगों की डिमांड थी, लोग बोलते है कि आप विकास करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कैसा क्या वोटिंग करेंगे, लोगों को ऐसा समझाएंगे।
1: लेकिन नाराजगी किसी संजय दादा नाराजगी किस बात को लेकर थी?
0: नहीं नहीं, नाराजगी नहीं किसी के ऊपर।
1: तो आप पे कोई दबाव बनाया गया, ऐसा आरोप शिवसेना यूबीटी के लोग लगा रहे हैं कि आप पे एजेंसीज का दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया?
0: नहीं नहीं, हमारे क्या, हमारी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, क्या एजेंसी के दबाव में।
2: आज सगळ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलाय कि शिवसेना पक्षात त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहेत। श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहेत।
3: विनंती करणार आहे की माझ्या सोबत राहा, मला जशी पहिली साथ दिली तशी आताही साथ द्या, आणि मी तुम्हाला कुठेही नाराज करणार नाही। मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करून गेलो, मी कार्यकर्त्याचा विचार करून गेलो, मी पदाधिकाऱ्याचा विचार करून गेलो, मी सगळ्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन, मी सगळ्याला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न करीन, मी कार्यकर्त्याला उभारी देण्याचा प्रयत्न नक्की करेन। आपल्या आपण जे माझ्यावर विश्वास ठेवला होता आजही विश्वास ठेवा, मी तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही। आणि मी काय दुसरं कुठं गेलेलो नाही आहे, शिवसेनेतून शिवसेनेतच गेलेलो आहे, विचारधारेला कधीही बाजूला टाकलेलं नाही आहे, विचारधारा सोडून मी कधी वागलेलो नाही आहे आणि पुढेही कधी वागणार नाही आहे। मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेतच राहणार आहे, त्यात काही दुमत नाही। विचारधारा मी नाही सोडलेली आहे बांधवांनो, तशी त्याची काही काळजी करू नका। पण काही मंडळी मी बघतोय की रागाच्या भारामध्ये काहीतरी असंविधानिक बोलतायत, माझी विनंती आहे आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे आपल्याला, असंविधानिक नका बोलू, संविधानिक बोला, तुमचा राग करायचा व्यक्त व्हा, नक्की व्यक्त व्हा। मी जर कुठं चुकलो असेल तर माझ्यावर राग करणं तुमचा हक्क आहे, मला नक्की करा, पण असंविधानिक नाही, असंविधानिक बोलू नका, विनंती आहे आपल्याला।
4: छह बागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे जो वो चुन के आए थे, वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे वो जो चुन के आए थे, वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है।
5: आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद है जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे।
6: मुझे देखिए कोई भी बागी नहीं है, शिवसेना में प्रवेश करे शिवसैनिक है, और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है कि माननीय एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने भी हमारे जो मुख्य नेता है DCM है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी, बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
7: आणि आता हे दोषी तुटायचे नाही पडालं, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये मी आमदार खासदार बघतोय, काही घर अजून आपले पक्षाचे प्रामाणिक आहेत काही नाही, काही घर सांगता येईल दोषी तुटायची नाही, काही घर सांगता थांबायचं नाही।

0: इसका कारण था।
1: In other news now, the Ayodhya Ram Temple donation controversy is deepening. The special investigation team probing the Ayodhya Shri Ram Temple matter is to meet Chief Minister Yogi Adityanath to submit its preliminary report on the seventh day of the investigation. The SIT has spent 6 days conducting inquiries, gathering information in Ayodhya before presenting its initial findings to the Chief Minister. While trust officials and temple functionaries have reportedly been asked not to leave the city, investigators are examining allegations linked to donations, missing jewelry, land purchases, procurement processes, and financial transactions. As political sparring intensifies, the focus remains on whether the government can uncover the truth behind the allegations and fix accountability.
2: Ek Ram Mandir katta admelo kuda allinda kalatan aagta ide. 5,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಜಪೋ ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನಾ, ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ.
1: All right, some breaking news now coming in from Lucknow, where a fire broke out at a coaching center. This is in Lucknow's Aliganj area. There you can see the firefighters at the spot. Efforts are on to douse the fire, and you can see that smoke emanating from there. So this was a massive fire that broke out at a coaching center in Aliganj. It's a coaching center there in a very busy part of Lucknow. And as you can see, firefighters now on the spot, and their visuals of earlier when the fire had broken out, and you can just see the massive flames engulfing that entire building. This is a coaching center in Aliganj area of Lucknow. And there are reports that some of the students who were actually present there had to jump out from that first floor. You can see one of the students being carried away by people who were, you know, rushing to the spot. And there you have, you know, a student jumping down. A fire broke out at a coaching center in Aliganj. For the moment, as you can see in the other visuals, the firefighters have control that fire. There is smoke emanating, however, from that building. It's said that several people are in critical condition, and there you saw one of the students there jumping down from that first story.
3: अपने पीछे क्या छोड़ के गई है जरा देखिए, ये सब कुछ जला हुआ सामान है। ये स्टोर था जिसमें तमाम सामान रखा हुआ था। इस सामान को अंदर देखिए, ये बाइकें किस तरीके की जली हुई दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि कितनी ज्वलंत ये आग थी, कितनी ज्वलंत ये आग थी, और इस आग का प्रभाव जरा इन व्हीकल्स को देखिए। तमाम तरीके के बाइक्स रखी हैं, और भी बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी पीछे रखी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बचा क्या है, इसके पीछे सिर्फ धुआं, सब कुछ राख हो चुका है। लोहा, मेटल, तमाम जो दूसरे धातु हैं वो भी अब गले हुए यहाँ पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। तो चुनौती अब अंदर को लेकर है, अंदर की तरफ वही प्रयास है कि आधुनिकतम मशीनों के जरिए अंदर जाकर कंट्रोल किया जा सके। तो अब दो फ्लोरों पर इस समय फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते से भी कुछ कर्मी अभी ऊपर गए हैं, और अब देखिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण स्पॉट है उस पर जाने की कोशिश है। जो सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे ऊपर का फ्लोर है जहाँ सबसे ज़्यादा धुआं उठता दिखा, उस पर जाने की कोशिश करते हुए कर्मी दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ी लग चुकी है और अब प्रयास है कि उस फ्लोर तक जाया जा सके, ताकि जो चुनौती है उसे देखकर आगे इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीमें हैं लगातार एक्टिव हैं। यहाँ पर लखनऊ के DM पहुँच चुके हैं, कमिश्नर पहुँच चुके हैं, ब्रजेश पाठक उपमंत्री, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही विधायक भी हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। हर तरफ एक्शन है। देखिए उधर JCB फिर एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ संकेत, जो तार यहाँ लटके हुए थे उन तारों को तोड़ा जा रहा है, तारों को हटाया जा रहा है। पुलिसकर्मी देखिए कैसे अपने हाथों से उस रास्ते को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि तोड़कर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचा जा सके। और जो संकेत हैं वो बड़े डराने वाले हैं, यहाँ जो संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर के हिस्से में अब देखिए किस तरीके से एक्शन है। सीढ़ी तैयार है, किसी भी पल पुलिसकर्मी और जो फायर ब्रिगेड के कर्मी, देखिए ऊपर चढ़ते हुए फायर के जो कर्मी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और सबसे चुनौतीपूर्ण यही ऊपर का फ्लोर

0: क्योंकि धुआं जिस मात्रा में ऊपर दिख रहा है वो डराने वाला है। और जो दावे स्थानीय लोग कर रहे हैं कि ऊपर से एक लड़का गिरा था, और जो लोग कुछ बता रहे हैं कि फ़ोन आए हैं, ऊपर के ही फ्लोर से आए हैं, लेकिन अब कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो ये डराने वाले विजुअल जो हैं, जो जानकारी है वो सबसे ऊपर के फ्लोर से जुड़ी हुई आ रही हैं। अब देखिए वापस उतर के आ गए हैं, संभवतः सीढ़ी में कुछ गड़बड़ी थी और फिर से सीढ़ी को सही जगह पर सेट किया जा रहा है ताकि जा सके और जाकर दिखा सके। तो ये स्थिति है। और तमाम यहाँ पर देखिए कैसे पुलिसकर्मी अभी बाहर जो निकल के आए यूपी फायर स्टेशन के ऊपर से, फिर एक पैकेट को गिराया जा रहा है ताकि रास्ते को खोला जा सके। और अब ये बाहर निकल कर आए हैं, जो उनकी जो स्थिति है देखिए उससे समझिए किन चुनौतियों में ये सर काम कर रहे हैं। सर क्या स्टेटस है कुछ अगर आप बताएंगे सर?
1: पहले फ्लोर पर कोई नहीं, सेकंड फ्लोर चेक कर रहे
0: हैं। खबर बड़ी खबर देते हुए फायर स्टेशन के अधिकारी है कि फर्स्ट फ्लोर पर कुछ नहीं है, फर्स्ट फ्लोर चेक कर चुके हैं, सेकंड फ्लोर की तैयारी है, सेकंंड फ्लोर पर अब जाना है। सर आग है क्या सेकंड फ्लोर पर?
1: अभी धुआं है,
0: अभी धुआं है ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे, ये अच्छी खबर है, सकारात्मक चीज कि पहला फ्लोर क्लीन है, पहले फ्लोर पर सिर्फ धुआं है, पहले फ्लोर पर कोई दूसरी चुनौती नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट फ्लोर अब क्लीन है ये बताते हुए। और अब देखिए वो सबसे बड़ी चुनौती जो सबसे ऊपर का फ्लोर है जिसको लेकर तमाम जानकारियां आई हैं सामने, अब उस फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मी दिखाई दे रहे हैं। धुआं उठिया किस तरह से उठ रहा है उसे देखिए, धुएं की चुनौती देखिए, धुएं की चुनौती कैसी है। इन चुनौतियों के बीच में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के अलग अलग प्रयास है और कतारबद्ध लगातार अब देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मी चढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बार भी हमने पिछली बार दिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के संग जा रहे हैं कोई, लेकिन इस बार के गेयर तो और भी एडवांस है। देखिए इन गेयर्स को देखिए, ये कपड़ा जो है ये फायर प्रूफ कपड़ा है। प्रयास ये है कि इस कपड़े से रेस्क्यू के लिए अंदर जाए। और साथ में किट है पूरी, जो धुएं के बीच में अंदर जाने के लिए महत्वपूर्ण गैजेट्स होते हैं उन गैजेट्स को लेकर जाते हुए यहाँ पर पहने हुए धारण किए हुए उन गैजेट्स को दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट लगातार यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है ये लखनऊ से, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं एनडीटीवी पे।
2: Alright, so there you saw Ajay Dubey at the spot reporting on this horrific fire that broke out at a coaching center, and you know, viewers, just discretion advised, that it's disturbing visuals of a person actually jumping down from that first floor. He hits the fence there and then is dragged away by bystanders. So right now we don't know the extent of the injuries in this fire, but as you can see, a massive fire. The authorities there telling NDTV that they have managed to see the first floor. However, now efforts are being made to go to the second floor as well to see what the situation is like over there. The fire has been brought under control, but as you can see, smoke emanating from that building. This was a coaching center, and this is the latest in a series of fires we've seen breaking out in buildings in our city. So a horrific fire there at a coaching center in Lucknow. Well, with that, we'll sip into a short break. We will try and get you more on that fire. For the moment, a break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Right, we're getting you some breaking news right now. This is regarding the blaze at a coaching centre there in Lucknow, which turned into a devastating tragedy, claiming the lives of 5 people so far. The death toll that was earlier 2 has now mounted to 5. The massive fire triggered scenes of panic as students and staff scrambled to escape thick smoke and rapidly spreading fires. This tragedy took place at a coaching centre in Lucknow's Aliganj area, which is situated in the northwestern part of the city. But the latest coming in is, of course, safety lapses have come under the scanner. And the death toll has mounted to 5. Take a listen to what our reporter Ajay Dubey has sent us from Lucknow.
1: 11 bodies ko nikal kar ambulance tak yahan par bheja ja chuka hai aur lagatar stretchers jo hain fir se andar bheje ja rahe hain. To ye behad hi dardnak ghatna Lucknow mein ghati hai. Tasveere ab aapko jo live action uski dikhate hain, aapko pehle dikhate chale samne frame par aapko Uttar Pradesh ke ACS home dikhai denge Sanjay Prasad. Iske alawa DGP bhi maujood hain, jo DG fire brigade hai wo bhi khade hain, Lucknow ke commissioner, Lucknow ke DM, tamam adhikari maujood hain aur nazar banaye hue hain. Jinke parijan yahan par the wo har taraf se wo log maujood hain, apna dukh zahir kar rahe hain, lagatar virodh प्रशासन का कर रहे हैं. लेकिन अब तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है. इन तस्वीरों में लगातार जो घटनाक्रम यहाँ की है, पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा उचित सेफ दूरी, राजेश जी सेफ दूरी में रहिए. लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, अब जरा पूरे बाहर के आपको विजुअल्स दिखाते हैं. यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं उन्हें दिखाते हैं. ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगाइए क्या दर्दनाक घटना घटी है यहाँ पर. देखिए, ये सामने एम्बुलेंस है और डेड बॉडीज़ को उन एम्बुलेंस तक लगातार पहुँचाया जा रहा है. हमने गिना है, तकरीबन 11 का आंकड़ा हो चुका है. डेड बॉडीज़ जो पहुँच चुकी हैं एम्बुलेंस में, लगातार एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडीज़ रखी जा रही हैं. और देखिए, अब एक और डेड बॉडी दिखाई दे रहा है. बॉडी बैग में डेड बॉडी को लेकर ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है वहाँ पर पहुँच रहे हैं. और देखिए, अभी सीधे इस बैग को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है. तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है. तस्वीरें देखिए, कतारबद्ध खड़ी फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों को देखिए, उठते धुएं को देखिए. ये दर्द, ये दर्दनाक घटना, ये पीड़ादायी घटना लखनऊ में जो घटी है. लगातार फायर ब्रिगेड प्रयास कर रहा है कि आग पर काबू हो. आग तकरीबन काबू की जा चुकी है, लेकिन जो धुआं है, उठता वो धुआं अपने पीछे जो दर्द की कहानी बयां कर रहा है, जो घटना घटी है. फिर एक बार चलते हैं उस तरफ जहाँ से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है, उस तरफ लेकर चलते हैं. अधिकारियों से भी संवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं. देखिए कैसे घटना घटी. जो जानकारी मिली, फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले जहाँ पर पेट फूड की दुकान थी वहाँ ये आग लगती है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया. और उसके बाद आग फैलती पूरी इमारत में जाती है. सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था, सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी, ये बताया लोगों ने. अब देखिए, ये जो स्ट्रेचर्स हैं लगातार ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं. 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है. स्ट्रेचर्स लगातार ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है. कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके परिजनों का जब उन्हें फ़ोन आया, वो भागे भागे आए, उनकी तरफ से बताया गया कि अंदर जो ऊपर का फ्लोर है सबसे, उसके बाथरूम में लोग हैं और ये वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है. तो अपनी बातों को भी बताया. आप जरा देखिए कैसे धुआं लगातार अभी भी उठ रहा है, अंदर क्या चुनौतियां. देखिए डीजीपी उत्तर प्रदेश की दिखाई देंगे आपको, आगे बढ़कर क्या यथास्थिति है उसे समझने की डीजीपी कोशिश कर रहे हैं. दीवालों में जो गड्ढा बनाया गया है वहाँ से लगातार बॉडीज जो है वो बाहर निकल के आ रही है. 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है. दर्दनाक ये घटना लखनऊ में घटी है. और अब सवाल प्रशासन के लिए भी है कि क्या अनुमति, किस तरह की परमिशन इन इमारतों को, इन प्राइवेट इमारतों को लेकर दी गई है, जहाँ ये इस तरीके की कोचिंग्स खासतौर पर चलती हैं, जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पर जो इंतजाम नहीं होते हैं सुरक्षा के, उनकी भी चुनौतियाँ कैसी हैं. देखिए अभी भी आप देखेंगे जो मॉडर्न मशीनरी है फायर ब्रिगेड की, वो लगातार पानी प्रेशर से फर्स्ट फ्लोर पर डाल रही है कि आग काबू की जा सके. आग तो तकरीबन बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो होता है, जो आयरन, अलग तरह के मेटल्स, उनमें एक ताप होता है, उसको ठंडा करने की कोशिश है. और आप देखेंगे डीजी फायर भी वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. तो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार डेड बॉडीज़ को निकाला जा रहा है. अंदर SDRF की टीम गई है. SDRF की टीम जब पहुंची है, तो पहुंचने के साथ ही वो अपनी मशीनरी, इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो होती है उनको लेकर आई है. SDRF की टीम की प्राथमिकता ये है कि अंदर जो धुआं है, सबसे बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो धुआं है, उसे बाहर निकाला जा सके. देखिए वो दो छेद देखिए, जब पीछे की तरफ.
0: ऑलराइट, वी आर कमिंग अक्रॉस टू अनदर बिग न्यूज. एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बिगन, बट द 6 UBT रेबल MPs विल नाउ टेल अस देयर रीजंस एज टू व्हाई दे हैव लेफ्ट द UBT शिवसेना कैंप एंड दे हैव नाउ jumped ship and joined the Eknath Shinde camp. Earlier, of course, they met Eknath Shinde at the residence, and on his screens right now, 6 rebel MPs who will be in moments from now holding that press conference and completely coming out and confirming that they have now joined the Eknath Shinde camp. This is, of course, a huge split 2.0 for Shiv Sena right now. All right, my colleague Saurabh Gupta has been tracking the story very closely. Saurabh, in just seconds from now, we will have the six UBT rebel MPs there with Eknath Shinde giving that press conference and confirming their announcement and that they have joined the Eknath Shinde camp. Tell us more about that.
2: That's right. You know, the political ramifications and the reasons, the political reasons, so to speak, for their decision to leave the Shiv Sena UBT after having been elected on a Shiv Sena UBT ticket following an earlier split. They stayed with the party, but these MPs have now also decided to switch sides. And they've said that they will publicly reveal the reasons for doing so, which is why they're holding this press conference at the Yashwantrao Chavan Center in South Mumbai. Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, has arrived just a short while ago. He was accompanied in a car, tailing his car, by Sanjay Dina Patil, again, one of the rebel MPs, who we believe was a little late in reaching the meeting at Eknath Shinde's, at Nandanwan a few minutes ago. But Sanjay Dina Patil has arrived, and that press conference, like you said, is expected to begin. This is political turmoil in Maharashtra. It's been a season of splits from West Bengal to Maharashtra. Whether it's the Trinamool Congress or the Shiv Sena UBT, this has happened across political parties, the opposition rung. And that's something that obviously has led to a counterattack, especially from the Shiv Sena UBT in this case, with Aditya Thackeray calling them, traitors, calling them people who've, been sold. But the rebel MPs camp say that they have valid reasons, politically valid reasons for their decision, and that's what they're going to share at the press conference. But this is going to be a volatile political issue,
0: right,
2: so Saurabh, to speak.
0: Stay with us. Let's just listen into that press conference. Six rebels with Eknath Shinde on stage.
3: Nagesh Patil Astikar, Hingoli Lok Sabha Madhya Pradesh Vela Kurun Aalile. तेरा आपले विषय शांति पर पहली गोष्ट मी विनंती करे शिंदे साहेब या सर्व कार्यक्रमाच्या बाबत ही सर्व मीडिया जी काय उत्सुक आहे त्याला आपण मार्गदर्शन करावं आणि आपण त्याला सांगावं त्याच्यानंतर आपल्या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करतो
4: हाय हाय हाय हाय मेळाव्यामध्ये मी उभा राहिलो होतो आणि एक वाक्य म्हणालो होतो मी तर आता एक नाही सहा टायगर इथे उपस्थित आहे आणि त्यांचा
5: एक मिनिट तुम्ही या तिघ जा तिकडे तुम्ही या तिघ इकडे
3: माध्यम प्रमुखाला विनंती करतोय थोडा आवाज आवाज
2: pictures coming in from the YB Chavan Center. This is, of course, Eknath Shinde, holding hands. You can see, of course, those MPs there. Sanjay Dina Patil from Mumbai Northeast, Sanjay Jadhav from Parbhani, Sanjay Deshmukh from Yavatmal Vashim. Then, of course, you have Om Rajin, Nimbalkar from Dharashiv. And then you have also, Bhav Sahib Rajaram Vakchore from Shirdi, and then also you have, the other.
4: Saha Khasdar. Now, Magashi Ghetle, Mi Puna Ghetu, Ite Maja Bajula, Om Raje Nimbalkar Ahe, Ite Bhav Sahib Vakchore Ahe, Ite Apra Sagat Ladaka Sanjay, इकडे संजय बंडू जाधव आहेत एक बॉस म्हणतात इकडे संजय देशमुख आहे आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहे. म्हणजे ट्रिपल संजय,
6: तीन संजय,
4: तीन संजय. आता बघा आपल्याकडे तीन संजय आहे. कोणाला घ्यायचं नाही आमच्याकडे. चौथा संजय राठोड आहे, भरपूर संजय आहे. आता त्यामुळे बाकी मी कुणाच्याबद्दल बोलतोय ते सांगायची आवश्यकता नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती आपल्या संजयबद्दल नाही, आपले खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार
7: नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती आपल्या संजयबद्दल नाही, आपले आपलीच आहेत खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेला
2: उपस्थित दिस प्रेस कॉन्फरन्स
7: पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते
2: दोज वर प्रेझेंट हियर
7: कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ
2: सीनियर शिवसेना लीडर रामदास कदम,
7: तिकडे गुलाबराव पाटील,
2: गजानन कीर्तिकर
7: आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत समोर, मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत सगळे,
2: अँड ऑल द मिनिस्टर्स अँड एक्स मिनिस्टर्स अँड MPs
7: आणि सगळा आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत, सर्व आमचं हे शिवसेना आहे, कुटुंब आहे, परिवार आहे.
2: देयर आर MPs अँड MLAs प्रेझेंट हियर
7: शिवसेना परिवारामध्ये.
2: देयर ऑल पार्ट ऑफ द शिवसेना फॅमिली.
7: शिवसेना परिवारामध्ये बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये.
2: अँड दे आर एंटरिंग द रिअल शिवसेना फॅमिली दॅट फॉलोज द आयडियॉलॉजी ऑफ बाळासाहेब ठाकरे अँड आनंद दिघे.
7: सामील झालेले आहेत.
2: दीज आर हार्डकोर शिवसैनिक हू आर मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट.
7: आणि
2: आय वेलकम देम फ्रॉम माय हार्ट इन टू द शिवसेना.
7: गेले 22-24 वर्षापूर्वी, अरे ते आपलं हे राहिलं ना, ते प्रक्रिया करायची ती बोलल्यावर चालेल. चार वर्षापूर्वी 22 जून 2022
2: years ago
7: शिवसेने
2: ऑन 22 जून 2022
7: 40 आमदार सोबत
2: वी हॅड लेफ्ट विथ 40 MLAs
7: पुन्हा
2: इन द बिगिनिंग
7: चौकार नाही
2: अँड
7: आता मारलेला आहे
2: अँड अगेन
7: काय म्हणतो त्याला सिक्सर
2: अगेन similar thing is happening.
7: Agodar apan 2022 sali
2: earlier
7: paksh vachavnyasathi
2: in 2022
7: Bala Sahib
2: we had done it to save the Shiv Sena party and to save the Shiv Sena
7: to uthav kela hota.
2: We had done it to save Bala Sahib's ideals.
7: टप्पा सुरू झालेला आहे, हा दुसरा टप्पा आहे.
2: And now
7: apla lada
2: this is the second time
7: bala sahebancha vicharacha aahe hindutvacha vicharacha aahe ani he
2: vichar fight is for bala sahebs ideology
7: manun
2: hindu ideology
7: it
2: and
7: shivsenache vichar it shivsenik
2: the shivsena's ideology and the shivsenics
7: यांनी
2: अँड दॅट्स वाय टुडे दीज मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट
7: सामील होण्याचा
2: they are in entering into Balasaheb Shiv Sena, the real Shiv Sena.
7: आणि
2: जॉइनिंग अस
7: खरं म्हणजे
2: अँड
7: काही लोक मीडियावर
2: काही
7: उलट
2: सम पीपल
7: चुकीच्या
2: हॅव मेड सम कॉमेंट्स
7: आरोप
2: हॅव मेड सम अननेसेसरी कॉमेंट्स दे मेड सम फॉल्स ॲलिगेशन्स अँड गिव्हन आउट फॉल्स इन्फॉर्मेशन आय वॉन्ट टू टेल देम
7: जे 6,000 आहे
2: दॅट all these people, these six members of parliament, whether it's Sanjay Jadhav, they have all worked in the grassroots. And earlier, along with workers on the ground, they have
7: Sanjay Dina Magashi me manalo Sanjay Dina
2: MPs
7: bau
2: taban bindas ani Patil earlier told me
7: and dosti yari sathi uttam hai ani Sanjay Patil ha khara dinancha kaivari hai संजय दीना पाटील नाव आहे त्यांचं प्रत्येक जणामध्ये एक वेगवेगळे गुण आहेत ओम राजे तर आपले मनाचे राजे आहेत जेव्हा
2: दे आर ऑल पीपल हॅव दे आर ऑल डिफरंट पीपल अँड दे हॅव डिफरंट स्ट्रेंथ्स
7: सगळे प्रयत्न पण त्यांनी मनात निश्चय केला आणि ते देखील खरं म्हणजे त्यांनी काल
2: अँड
7: परवा
2: they've all come together
7: 4 दिवसांमध्ये कार्यकर्त्यांशी बोलणं केलं कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली
2: they met party workers
7: आणि
2: they met with party workers and discussed it with them
7: कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे हे सगळं ऐकून
2: and they feel that there should be work done in their constituencies
7: ani kai lokani tanna
2: hinale and this has been discussed in the media as well
7: real star matlab tyancha kade hote
2: some people said things to them but they've not listened to them
7: mi sangto te real star ahet kharat karyakartyancha
2: they are real stars
7: ek karyakarta cha grassroots cha neta kasa asto
2: they are real stars for their party workers
7: sanjay uttam rao
2: and they are examples of grassroots workers
7: atadar sangat त्यांचं कामही उत्तम आहे

0: Maharashtra is different from other states.
1: Parampara vegri hai.
0: Our culture, our traditions are different. And people, what they feel, what is in their mind. And that's why we can see how people are joining the Shiv Sena in large numbers. And the reason for that is that our agenda is development. Our agenda is to bring change to the lives of the poor people.
1: And
0: we have credibility in Maharashtra today.
1: आपल्याकडे येण्याचा वोग सुरू आहे. आता
0: people are coming to us in large numbers. Today
1: यामध्ये 6000 आपल्या सोबत आलेले आहेत. तेही त्यांच्या मतदार संघात
0: 6 members of parliament have joined hands with us. And in their parliamentary constituencies, for lakhs of constituents, they have been elected by those lakhs of constituents. And our workers, our party leaders there, and all these people, the strength of these people, these 6 MPs, the Shiv Sena will be strengthened. And the members of parliament who have come to us to get work done in their constituencies and to ensure schemes reach their constituencies, that work will be ensured by the Shiv Sena, and this is a promise by Eknath Shinde. And I always keep my word, that you know. The people of Maharashtra pose faith in Eknath Shinde as an ordinary worker. They see Eknath Shinde as a worker. There are so many people who are my colleagues. I want to tell everyone who are all these 6 members of parliament that we are not leaders, but we are workers. Eknath Shinde, and Eknath Shinde will treat you like people who work and will respect your constituents. And we are all come to one family. And like family members, we will work together in the future. And in the coming days, whatever is required for development, whatever your demands are, remember there is a double engine government. And this government will ensure the work gets done. And that is why we've all come together, and that is the belief with which we've come together. All our leaders, all our MPs, MLAs and ministers, and whatever issues you have, whatever is related to the state government, whether it's related to the union government, we will ensure those issues get resolved and there will be no issues, there will be no roadblocks. I assure you that. And all of us have to get together and further strengthen the Shiv Sena and make it grow and make it reach every village and every home. And your cooperation and help by coming together will create a much stronger Shiv Sena in Maharashtra.
2: And I want to tell reporters at this point here. Operation Tiger is was something that you used. You all were running this.
1: I want
2: to tell you. Full proof. We always conduct foolproof operations. And there's no need to say it. Everything is in front of you today. And whatever the processes are, we've completed those processes. And all these six MPs are joining the Shiv Sena.
1: Operation Tiger, full proof success.
2: And you reporters have named it Operation Success Tiger. This Operation Tiger is now completely succeeded in a foolproof manner. Once again, I want to welcome them into the Shiv Sena family.
1: Operation Tiger success. पहले ऑपरेशन हुआ था 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं क्रिकेट में क्या कहते हैं षटकार सिक्सर और सभी लोगों का परिचय मैंने कराया है एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है धुरंधर है धुरंधर और सभी लोग अपनी अपनी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से चुनकर आए ये जो लोग कहते हैं आरोप लगाते हैं ये स्वार्थ के लिए गए इनके लिए गए उसके लिए गए कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे मैं भी था अच्छा था मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं इसका आत्मचिंतन आत्म परीक्षण करना चाहिए न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे है अच्छे है। ये भी करके देखा उन्होंने लेकिन ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं तो जाने दो मुझे कुछ बोलना नहीं ज्यादा लेकिन ये 6 खासदार जो है ये ओम राजे निंबाळकर भाऊसाहेब वाकसोरे संजय दीना पाटिल यहाँ पर हमारे संजय बंडू जाधव संजय देशमुख नागेश अष्टीकर ये सब लोग पूरे अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए और जो भी किसके जो जो प्रॉब्लम्स है कुछ अभी मैं ओम राजे के बारे में बता दिया है अभी फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जैसे चुनाव क्षेत्र में विकास की बात है वैसे पारिवारिक भी कुछ भी तकलीफ है उसके पीछे एकनाथ शिंदे खड़ा है कुछ भी व्यक्तिगत उनकी तकलीफ है उसके लिए हमारा साथ है हम साथ हैं और मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो फिर मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूँ ये मेरा स्वभाव है और ऐसे ही रहना चाहिए ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है ये आनंदी के साहब ने सिखाया है और इसलिए आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं शिवसेना परिवार में शामिल हुए बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा में शामिल हुए धर्मवीर आनंद दिघे साहब की विचारधारा में शामिल हुए इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है शिवसेना बढ़ रही है शिवसेना चांदा से बांदा पहुंच रही है कई लोग हमारे टिंगल करते थे मजाक करते थे शिवसेना ठाणे तक है मैं उन्हें कहा अभी देखो शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है

0: और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है। गृह मंत्री अमित भाई सहयोग कर रहे हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार ये महाराष्ट्र में है। इसीलिए ये हमारे सभी साथी जो छे सहयोगी सांसद है, उन्होंने बहुत सोच समझकर उनकी चुनाव क्षेत्र के जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए ये सब निर्णय लिया है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। गलत सलत आप जो 2022 से गालियां देना है, दे दो। जितनी गालियां देते रहोगे उतने खड्डे में जाते रहोगे, जाओ खड्डे में। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, हम काम कर रहे, काम करने वाले लोग हैं। 2.5 साल का मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल भी आपने देखा है, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के हुए। कई लड़की लाडली बहन जैसे कई स्कीम जो है वो भी हो गई शुरू। आज भी महाराष्ट्र आगे जा रहा है, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है, हम टीम बनकर काम कर रहे, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे। और इसलिए केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इसीलिए राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे जो महाराष्ट्र के
1: All right, we're shifting our focus to other big news. This is, of course, the tragedy that unfolded in Lucknow's coaching center there in Aliganj. The death toll has now risen to 13 from 11 a few moments ago. The PMO has taken to X and they've written, I'm quoting here, anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow in Uttar Pradesh. My condolences to the families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance. Well, an ex-gray share of rupees 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given rupees 50,000. That's the update from the Prime Minister's office. This, of course, a tragedy that broke out earlier this evening. Prime Minister Modi has condoled the death. At least 13 students have died in the fire tragedy in Lucknow's Aliganj, while various students, staff, they have also been injured in the fire tragedy. There are, of course, various questions being arisen on the safety standards and the safety protocols after the fire broke out in a coaching center in Lucknow's Aliganj. Take a listen to the reactions coming in on this tragedy.
2: अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए।
3: कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल?
2: अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में
4: देखा होगा आपने, किस तरह
2: दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहां मैं था। बहुत दुखद घटना।
1: All of my colleague Ajay Dubey, who's tracking the story very closely, is now joining me. Ajay, the death toll is increasing by the minute. It stands at 14 as we speak. Rescue operation is underway, but tell us more about what is happening on ground right now.
5: Definitely, this number will increase surely. And let me show you the visuals right now. I can show you there are many of fire brigades are there, and the road is blocked now, because in a while Chief Minister will also reach to the spot. The security related with Chief Minister has arrived and they are doing the security arrangements on the spot. So the visuals, what we are trying to show you is that the road is blocked now and continuously ambulances are coming because the dead bodies are continuously coming out. So these ambulances are continuously coming out and the number is increasing. That is what they are expecting, and right now the rescue operation is going on. Again, we are heading towards the building and I will show you the visuals. As CM informed that the ACS home and the DGP, they both have arrived on the spot. We'll show you the visuals, right? They are the ACS home, Sanjay Prasad, and the DGP, Mr. Rajiv Krishnan, he's standing right in front of the building, and with him, the DG Fire, Sujit Pandey, is also standing right there. Chief Minister informed that they will prepare a report and show him. Chief Minister is coming back from Bulandshahr.

0: Welcome. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal. Lots more lined up for you. Let's start with that fire tragedy which broke out in a Lucknow building in Lucknow's Aliganj area, where as we speak, at least 14 people have been killed in the fire. However, the death toll is increasing by the minute. Now, that building contained a gaming centre, a coaching institute and a pet clinic. The cause of the fire is yet to be determined. The UP Chief Minister has now ordered a probe and asked the UP Police and the administration to submit a report as soon as possible. But on your screens right now are dramatic visuals, which of course shows a man jumping from the first story of the building to save his life. Visuals also show pets from the clinic being rescued as well, because where the fire broke out, it was a gaming center, a coaching hub, as also a pet clinic. Reports are also suggesting that at least 10 to 15 people are still trapped inside the building. However, Prime Minister Modi has also condoled the death and announced an ex gratia of rupees 2 lakh for the families of those who died in the fire.
1: Meri hardik ichcha thi yaar कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा।
2: 4 बच्चे घायल हुए हैं, इनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहां पहुंच रहे हैं। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है।
0: We'll go across the reporters in a bit, but let's tell you more about that tragedy which broke out in Lucknow's Aliganj in a building which was a pet clinic, a coaching center and a gaming center. As we speak, 14 people have been killed in that inferno. Rescue operations are underway as we speak, because there are some people who are still trapped inside the building. There were frantic and harrowing visuals coming out on your screens right now. Of course, people jumping from the first story to save their lives. As we speak, the cause of the fire is yet to be ascertained, but there will be a report which will be submitted to know why that fire tragedy broke out. I want to go across to my colleague Ranveer Singh, who's joining me live from outside the KJME hospital in Lucknow. Ranveer, 14 people have died, and they've of course been a lot of people who've also been injured in that fire tragedy. You're joining me live from the KJME hospital. Can you tell us what's happening there as we speak?
3: If we talk about KGMU, more than 17 people brought to hospital. Out of them, around officially 8 to 9 people died, but the number of casualties is around 14, and rest of the people are getting treatment in KGMU. I am standing just outside the mortuary of KGMU, and you can see the security arrangements. A huge number of policemen, they are deployed here. CM Yogi Adityanath is returning back from Aligarh.

0: those buildings, obviously there are some lapses. So the requirement is a following of SOP. This is must. Right. Everyone should be responsible, and stern action is expected, because CM Yogi Adityanath has spoken to DGP as well as ACSOM and said that they have to file a report over this fire tragedy.
1: Right, Ranveer, of course, stern action is expected. A report will be submitted to Estern, the cause of the fire in Lucknow's Aliganj, which has claimed at least 14 lives. It was a three-story building which housed a gaming center, a coaching center, and even a pet clinic. But like you also mentioned, Ranveer, that it, of course, raises pertinent questions on safety lapses in various commercial buildings after fire tragedies being broken out all across India, from Delhi to Ghaziabad to right now in Lucknow. What we're also learning is that the rescue operation is over. The rescue team had to break the walls to rescue trapped people inside the building because of blocked routes, because there was no fire exit. I want to ask you, what perhaps can we expect in the next few hours? We do know that the UPCM is on his way back and he is being rushed to the fire spot as we speak.
0: We expect that CM Yogi Adityanath will reach the spot. He will ask the officials about what is the reason between this fire incidents. He'll talk to the doctors. He'll ask that what is the status of those who are injured in this fire tragedy. And he will raise question to those who are responsible for security checks in such kind of incidences. So these are the actions, and SDRF team is there, local administration is there. They are still trying to search the entire building, that maybe some body is overall burnt. So they are searching the building. The rescue operation is over, but the search is still on. And the top officials, including Deputy CM, as well as the local MLA, district magistrate, and top officials of administration and UP government, they are there. And we expect that the kin, they will come to hospital.
1: All right, Ranveer, we have the Deputy Chief Minister, Brijesh Pathak, on the phone line. Brijesh, sir, of course, you broke down while talking about the inferno which broke out. Can you tell us more about the rescue operations right now? We do know that 14 people have lost their lives. 14 लोगों की जान जा चुकी है. आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सारे रूट्स ब्लॉक थे, जिसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया, वॉल तोड़ने पड़े टू रेस्क्यू द पीपल. अभी आप बता सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है और कितने लोग अंदर ट्रैप्ड हैं?
2: रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और 15 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं. उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है. छह बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है. घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी. पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटनास्थल पर ही हैं.
1: जी, आप कह रहे हैं न्याय मिलेगा, बट ये काफी लेट नहीं हो गया, क्योंकि 14 लोगों की जान जा चुकी है. यंग स्टूडेंट्स, यंग लाइव्स, ये हादसा क्यों हुआ? क्या सेफ्टी लैप्सेस थे? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे रूट्स ब्लॉक थे, कोई फायर एग्जिट नहीं था, जिसके चक्कर में जब आग लगी, जो सारे लोग थे बिल्डिंग में, वो बाहर नहीं निकल पाए.
2: ये रूट ब्लॉक नहीं था, ये बिल्डिंग में, ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी. नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साथ था. ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था, कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे. उसमें आग लगी है और चूंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के हिस्से में धुआं भर गया था, तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके. आगे चूंकि आग ज्यादा थी, तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है. वहां पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं.
1: जी, बट हमें ये बताइए कि अभी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी वापस आ रहे हैं स्पॉट में जानने के लिए कि ये हादसा क्यों हुआ. वो कह रहे हैं कि अभी एक रिपोर्ट सबमिट होगा. हम अभी आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऐसे आग लगने से 14 लोगों की जान जा चुकी है और हम और बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैप्ड है बिल्डिंग में.
2: लिसन प्लीज, घटना के उचित तरीके जांच के आदेश दिए हैं और कोई भी दोषी से बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जी पर ऐसे कार्रवाई तो होगी बट 14 लोगों की जान जा चुकी है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमने पहले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो किए, क्योंकि रूट्स ब्लॉक थे, दीवारें तोड़नी पड़ी सारे पुलिस ऑफिशियल्स को, सीआरपीएफ लोगों को, ताकि उसके बाद ही जान बच पाई है लोगों की।
2: ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।
1: आप अभी क्या कहना चाहते हैं उन सबको, उन सब पेरेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं, जिनके बच्चों की जान जा चुकी है इस फायर ट्रेजेडी?
2: पेरेंट्स हमारे परिवार के हैं, बहुत ही दुखद घटना है, भयावह घटना है, पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
1: जी और क्या कोई, क्या आपको लगता है कि अगर रूल्स और रेगुलेशंस पहले होते इस बिल्डिंग में तो ये हादसा नहीं हो पाता?
2: चिंता ये है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, धुआं बाहर निकल रहा है, फर्नीचर बाहर किया जा रहा है, अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे।
1: जी धन्यवाद पाठक जी एनडीटीवी से बात करने के लिए। On that note, we slip into a very short break, but come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: Welcome back and shifting our focus to other big news. We have some breaking news on coming right now. Notably, four legislators were absent from the meeting called by UBT. Uddhav Thackeray, we're telling you about their names right now. Sunil Shinde, MLC. He's a former Worli MLA who vacated the constituency for Aditya Thackeray. The second MLA to skip the meet is Sanjay Derkar. He's an MLA and from Vani. Then we have Rahul Patil, MLA from Parbani, and Sanjay Potnis, MLA from Kalina. Remember, all these three MLAs skipped the meeting, and UBT Sena again sees absentees. Take a listen to all the reactions coming in.
1: आज इसके न्यूज़ बनाई आप? आज बड़ा दिन है बहुत. आज ऑपरेशन टाइगर 2.0 सफल हुआ है. तो आगे 3.0, 4.0 अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा.
2: कुछ आरोप बिलो द बेल्ट भी किए गए थे जो टिप्पणी की.
1: देखो 2022 से यही चल रहा है इनका गाली गलोच करना, दूसरा कुछ नहीं. गाली गलोच करके जो है ऐसी परिस्थिति आ गई है, इसलिए लोगों ने ऐसी परिस्थिति इनकी बना दी है. तो इनको और गाली गलोच करना है तो करने दो.
3: संजय
1: जाऊ दे, कोणी जबाबदार बरे येते तिकडे बसून शिव्या देत आहेत, त्यांच्या पार्टीला फायदा होतोय.
2: आप जो है ये भी कहा जाता है कि शिल्पकार है ऑपरेशन टाइगर के साथ में दिल्ली में जिस प्रकार से बैठे.
1: मैं एक सादा कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस ऑपरेशन टाइगर में शामिल थे. सभी के संबंध अलग अलग एमपी से थे, सभी लोगों ने इसमें काम किया है. मैं सभी मेरे सरकारी और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज सबके कारण और शिंदे साहब पर विश्वास रखकर ये सांसद शिवसेना में इन्होंने प्रवेश किया. सगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया ज्या आहेत त्या पूर्ण झालेल्या आहेत.
4: पुढे काय असणार आहे ऑपरेशन?
1: काय पाहिजे अजून तुम्हाला पुढे? अजून काय पुढे पाहिजे? आता बस झालं नाही हे.
0: Shrikant Shinde, MP of Lok Sabha, where he talks about how people have started trusting more the Eknath Shinde camp. And of course, this absentees that the UBT Sena is seeing today, wherein three MLAs and one MLC skip the emergency meet, comes also at a time when Eknath Shinde, a few minutes ago, clearly said that Operation Tiger is foolproof and a huge success, at a time when six rebel UBT MPs have now joined the Eknath Shinde camp, taking that number to 13 Lok Sabha MPs with Eknath Shinde. Apart from that, what we're also witnessing right now is a mass exodus from the UBT Sena camp. A wave of leaders not attending the UBT Sena's emergency meet, which makes it three MLAs and one MLC skipping that crucial meet. I want to go across to Saurabh Gupta, who's been tracking the story very closely. Saurabh, four UBT leaders skip the UBT Shiv Sena emergency meet on a day, of course, when six rebel UBT MPs have now joined hands with Eknath Shinde camp. A total show of strength for the Shinde camp at a time when we're also seeing perhaps trust deficit in the UBT Sena so far. Tell us more.
5: You know, I mean, this was a meeting of MLAs, and presumably so, any absence at a meeting at this particular point of time would be presumed.

0: The actual reason for this yet, but yes, we know that Yogi Adityanath has already visited the fire incident and now he's also on his way to the hospital where injured people have been taken. A massive fire that broke out in a Lucknow building in Aliganj area. This is a commercial building that also houses a pet center. It also has a coaching center. It also has a gaming zone. 14 people have now been killed in this fire. That's what we know so far. And this building, like I said, contained a gaming center, a coaching institute, also a pet clinic. The cause of the fire is still to be known. UP Chief Minister has ordered a probe. He has asked UP Police and the administration to submit a report as soon as possible on what really happened. But dramatic visuals have also shown a man jumping from the first story of the building to save his life. Remember, most of the people who have died are also students, young people. This building also housed a coaching center. Brijesh Pathak, Deputy Chief Minister of UP, was amongst the first to arrive at this site and he also spoke to students. The evacuation is underway. Rescue operations are also underway. Visuals also showed pets being rescued from the clinic. Prime Minister Modi has already condoled the deaths that have taken place. He has announced a compensation of 2 lakh rupees for the families of those who died in the fire.
1: वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत. प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है. मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि
2: 15 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं. उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है. 6 बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है. घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी. पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटनास्थल पर ही हैं. ये कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी. नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साथ था. ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था. कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे. उसमें आग लगी है और क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के सिरे में धुआं भर गया था तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके. आगे क्योंकि आग ज्यादा थी तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से.
0: So that's Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh. He is meeting victims of the blaze that erupted at a commercial building in Aliganj in Lucknow. Standing next to him is Brijesh Pathak, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Remember, this blaze erupted at a commercial complex that also housed a coaching center and a gaming zone. Many of the people who have died are also youngsters. Many of them have been injured. The evacuation process is on. Rescue operations are on. The Chief Minister has already visited the site of the fire and now he is visiting the hospital wherein many of these people who have been injured in this fire incident have been brought. He's talking to victims, he's talking to relatives of those people who have been hurt in the fire. Those visuals there of the fire incident that took place in Aliganj in Lucknow a few hours ago.
3: एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है जो अत्यंत पीड़ादायक है और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूँ और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा. लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है. मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ. मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ.
0: Well, that's the Raksha Mantri and also Lucknow MP Rajnath Singh saying that he will be visiting Lucknow very soon. And this is after the deadly blaze claimed

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: पैसे गिनने के लिए लगाया हुआ था। SBI बैंक की जिम्मेदारी थी और लगाए किसको? थर्ड पार्टी को। जांच में खामियां पाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार नोट को जहां पे कच्छ तक ले जाने के बीच में भी खामियां पाई गई हैं और बार बार रिपोर्ट आ रही है कि सीसी कैमरे भी बंद किए गए थे। अब सवाल उठता है SIT के ऊपर, तो ये है कि कुंभ के ऊपर SIT गठित हुई थी ना, तो क्या कुंभ के जब भगदड़ हुई थी उस पर SIT बनी थी? SIT की रिपोर्ट आ गई क्या? करीब 1-1.5 साल हो गया, अगर आ गई तो अभी बता के जाइएगा कि SIT की रिपोर्ट आ गई। सवाल उठता है कि आपने आप जब हम पूछते हैं कि आप में हम लोग प्रभु का मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आदर शासन पे चलने वाले लोग हैं, अगर वहां गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने की मारे सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच करवानी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि नहीं नहीं हम लोग देखिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है। जो प्रभु राम की बात करती थी, आज प्रभु के राम के पे घर पे चोरी के संबंध में बात करने के लिए टीवी पे आ ही नहीं रही है। चेहरा वो सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को। क्यों नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी? पाक साफ है तो आइए सामने बोलिए कि जो समाजवादी पार्टी कह रही है, आइए मिलके हम लोग सब लोग जांच कराते हैं। सच का दूध पानी का पानी हो जाए भाई। हम जो कह रहे हैं, आइए मेरे साथ मिलके, प्रभु के चोरी की बात है ना, तो उसमें आ हुए इधर उधर की बात
1: है, गिल्टी कॉन्शियंस
0: सवाल उठाए, तो आइए मेरे साथ मिलके कि जांच करवाते हैं साथ में। और लोगों को पता चलना चाहिए। तो आपके मन में चोर क्यों है? क्यों आप भागने से डर रहे हो? क्यों आप प्रभु के नाम पे यहाँ पे जब वहाँ पे चोरी की बात, देखो इसके पहले जब जमीन में गड़बड़ी हुई थी 2 करोड़ की 18 करोड़ हुई, तो समाजवादियों ने आवाज उठाई थी ना।
1: अच्छा, उन्हें जवाब देने दीजिए। गिल्टी कॉन्शियंस, वो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।
0: दो सेकंड और उसके बाद जब हम एक सवाल उठा रहे हैं कि प्रभु के यहाँ
2: लेट हिम कंप्लीट हिज सीनियर टू मी,
0: तो आपको मेरे साथ आना चाहिए ना कि चलिए हाँ ठीक है।
1: पर वो कह रहे हैं ना, उन्होंने SIT गठित कर दी है, आप 15 दिन का वेट कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बोला है 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप वेट कीजिए, भ्रम मत फैलाइए, डराइए मत।
0: हम तो कह रहे नहीं नहीं हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। ये बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह भ्रम फैला रहे हैं क्या? महंत कमलनाथ जो वहाँ कमलनाथ दास जी भ्रम फैला रहे हैं क्या?
1: बताइए अमितोष पारिक, दीज आर पीपल फ्रॉम विद इन द संघ परिवार, विद इन द बीजेपी हुआ क्वेश्चन है अमितोष पारिक।
0: जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उन पे कैसे कैसे आरोप लगे?
1: अरे आप ही बोलते रहेंगे तो उनसे हम कैसे जवाब मांगेंगे?
0: नहीं
1: अमितोष पारिक,
2: पद्मजा, थैंक यू सो मच। आई थिंक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द राइट टू हैव क्वेश्चन एनी ऑफ द थिंग डजंट प्रोवाइड यू द टारगेट विद डू यू बिलोंग टू द बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई विल नॉट टारगेट एंड कैप्टिवेटेड इन टू सच थिंग्स, बट आई थिंक समाजवादी पार्टी लूजिंग देयर मार्बल्स। अर्लियर दे वर नॉट रेडी टू फाइल एन FIR. They were not ready to go before the courts. They were not ready to identify allegiance. They were not ready to give evidences. But now everything is being going according to the law.
1: But Amitosh Parikh, I'm sorry. No. I think that point is gone where you can say that Samajwadi Party is losing its marbles. It's doing politics. They fired at Ram Sevak. The fact of the matter is today, look, the uncomfortable truth is, had the Samajwadi Party not spoken about it, perhaps we would have never known what is happening. It was even after the Samajwadi picked up this issue, the first reaction came from Champat Rai and he said there is nothing wrong. It is only after the PMO sought a report that this SIT was even constituted on the request of the Ram Janmabhoomi Trust. Today you cannot say why is the opposition picking it up. They are, because this is an issue that affects everyone, Amitosh Pai.
2: On the request of whom, Padmaja?
1: On the request of Janmabhoomi Trust, but initially exactly, what is Champat Rai ji said?
2: Trust, because
1: he said
2: people,
1: there is nothing wrong. Yeah. Shouldn't he have immediately gone and filed an FIR?
2: Yeah, still we're saying there's nothing wrong until the SIT get in. No, Padmaja, until the SIT provides its investigation report, we're still saying there's nothing wrong. We have trust in trust. And therefore, I believe that losing what Samajwadi Party is doing, Padmaja, is very concerned and very serious for the ideology of Sanatan. They are just using this matter for their politicalization. They are not approaching before the court. They are not giving any evidences to the SIT. Every day coming to the debates, putting out some other new points. I believe that they're having the losing lips is definitely sinking the ship. But I know one thing, that the trust has requested the government to bring in SIT, get the picture clear, get investigation, get everyone you consider to be part and parcel of the investigation. Everyone is there. And I believe that Champat Rai, the general secretary of the trust came forward himself and gave the request to have the investigation.
1: Okay, only what last 30 seconds. Here?
2: They have no trust in the SIT. They are not approaching to the court. They are not approaching to the
1: Okay, I'm unfortunately, I'm completely out of time because, you know, today we talk...
0: Rajneesh Singh, Bharatiya Janata Party ke neta chitthi likh rahe hain, galat likh rahe hain kya?

0: पीएम को चिट्ठी लिखी है कि किसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो बीजेपी के, उनको भी बोल दो गलत लिख रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप।
1: ओके यू नो आई एम आउट ऑफ टाइम टुडे, बट वी प्रॉमिस वी विल गिव यू मोर डिटेल्स एंड रीजंस।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: का मिलता आप भी करते
1: आपकी
0: शादियों में देखिए ना आप लोग सब अभी वीकेंड पे किसी की शादी थी
1: आपकी
0: हाँ सब साथ में नमस्ते नमस्ते कर रहे थे
1: ना पद्मिला जी आपका डिबेट सुन रहा था तो मैंने गूगल पे लिखा कि दुख के समय क्या करें तो गूगल जवाब दे रहा है दुख के समय सबसे महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें धैर्य रखें किसी करीबी से बात करें और या प्रार्थना का सहारा लें तो इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर इस दुख से निकलने का एक हमको थोड़ा सा शक्ति दे दो क्योंकि हम 19 में टूट गए 22 में टूट गए फिर 26 में टूट गए टूटते ही जा रहे हैं तो अब इस टूटने के बाद जुड़ना होगा तो अब हमें जुड़ने का एक सहारा दो हम बीजेपी को कुछ नहीं बोलेंगे आप जो चाहती हैं मेरे मुंह से कुछ काउंटर ये वो क्या कहूँ मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ पुलिस भगा दे रही है कोर्ट में जा रहा हूँ कोर्ट भगा दे रही है कहीं जाने लायक बचे नहीं है अब एक ही जगह जाएंगे 2029 में जनता की अदालत में और उनसे कहेंगे जनता जनार्दन
0: नहीं पर आनंद जी उसके पहले आपके सामने कई और लड़ाइयां रहेंगी आज 17 सीटें थी एक सेकंड जो एमएलसी के चुनाव थे 17 सीटें थी 6 जो है अनकंटेस्टेड जीत गई अगर जो महायुति है 6 अनकंटेस्टेड जीत गई उसमें जो बाकी बचे उनमें से 10 एनडीए जीती एक एक इंडिपेंडेंट जीते और वो इंडिपेंडेंट भी एज वी स्पीक अभी आकर के एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में सो कॉल्ड बीजेपी रेबल जो थे आके एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में मिल जा रहे हैं आप तो यू नॉट इवन पुटिंग अप अ फाइट आज आप लड़ सकते थे ना ठीक है वो आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं व्हाई डिड यू अलाउ फॉर 6 सीट्स टू गो अनकंटेस्टेड इन दिस एमएलसी इलेक्शन ऐसे तो नहीं चलेगा ना आप 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के साथ डील करते रहेंगे और वो लोग जीतते रहेंगे फिर आप रोते रहेंगे
1: ये चुनाव जनता का डायरेक्ट नहीं था ये नगर सेवकों का नगर पंचायतों से चुने हुए लोगों का था इसमें धन बल चार्टर्ड विमान उड़ती है वो जो नासिक से जीते हैं वो चार्टर्ड विमान से आए हैं मुंबई इतना पैसा नहीं है पैसा समाप्त हो चुका है विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ विपक्ष के पास एक ही चीज़ है धीरज धैर्य शांति मौन
0: Okay, everyone wants to count it.
2: In the affidavit by Uddhav Thackeray,
0: Varun Singh and Rohan Gupta.
2: हाँ नहीं आई एम जस्ट सेइंग एफिडेविट जो फाइल किया था इलेक्शन कमीशन में उद्धव ठाकरे ने उनकी खुद की पर्सनल संपत्ति 143 करोड़ थी उनके बेटे की कुछ 23 करोड़ रुपए थी उनके जो बाकी एमएलए हैं उनके भी कई करोड़ रुपए हैं तो पैसे मतलब मराठी में कहते पैसे संपल पैसे कहाँ चले गए ये पार्टी में पैसे हैं खर्च में अगर आपको लगता है कि पैसे से ही सब कुछ हो रहा है और इलेक्शन उसी तरीके से चल रहे तो आप क्यों पैसे बचा रहे हो आप भी पावर में आइए पैसे दीजिए अगर उसी तरीके से चल रही है लोगों को बोल दीजिए कि इस तरीके से राजनीति हो रही है भाई हम कुछ नहीं कर सकते हम पैसे खर्च करने पड़ेंगे
0: पैसे औरों को मिल रहे हैं आनंद जी के सिर्फ दुखों का पहाड़ मिल रहा है रोहन गुप्ता
3: देखिए आनंद जी का चेहरा दिखा रहा है कि अब उनकी अमीर नेताओं की गरीब पार्टी बन चुकी है और बेचारे यहाँ पे बैठे हुए उन्होंने कहा धीरज उसके पहले आई थिंक वन ऑफ द एनालिस्ट क्लियरली सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिट द ग्राउंड यू कैन नॉट जस्ट सिट इन एसी केबिन एंड क्रीप हो के हमारे साथ ये हो गया ये हुआ इट्स अ बैटल यू हैव टू गो ऑन ग्राउंड एंड कन्विंस पीपल अबाउट योर आइडियोलॉजी 99% ऑफ देयर इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए हैव कंप्लेंट दैट वी हैव नॉट बीन गिवन टाइम बाय अवर लीडरशिप दैट्स अ कोर इशू अनदर पॉइंट पद्मजा जी रचित जी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट अभी वो बात कर रहे हैं जब लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं जब डीएमके को कांग्रेस पार्टी ने गच्चा दे दिया तब किसी ने क्यों नहीं कहा पांच एमएलए चुने माय ब्रदर स्टेलिन थे एक दिन के खत्म हो गया दूसरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के 3 दिन पहले ममता बनर्जी के खिलाफ वीडियो रिलीज किया कि सांप्रदायिक बिहेवियर के कारण आज ये हाल हो रहा है ममता बनर्जी पे अटैक किया तो कहां से बनेगा इंडिया गठबंधन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वोट फॉर दिस इज द गठबंधन वेयर यू अटैक
0: नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वोटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्विचिंग दैट हैपेंस आफ्टर इलेक्शन लुक ड्यूरिंग इलेक्शंस यू गो ट्रेड बार्ब्स अटैक ईच अदर आफ्टर इलेक्शन यू हैव बीन इलेक्टेड ऑन अ सिंबल
3: गिविंग बेट्रेयल टू डीएमके Is it after election or not, Padmaja ji?
0: Okay, Congress that happened after election.
3: After election?
0: हाँ तो शर्म की कोई जगह नहीं है, like वरुण सिंह said earlier. शर्म की कोई जगह नहीं है, राशिद किदवई. राशिद
4: भाई, जब पद्मजा जो कांग्रेस ने डीएमके के साथ करा वो बिल्कुल शुद्ध अपॉर्चुनिटिज्म अवसरवाद था लोकतंत्र पे कलंक था आप जो
3: भी कहना चाहिए
4: राजधर्म उसका जो कोलिशन धर्म का जो था उसको कांग्रेस ने दरकिनार किया वो कांग्रेस को उसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम की जाए लेकिन रोहन गुप्ता ये बताए जो पद्मजा आपने बताया था महाराष्ट्र का एमएलसी का चुनाव जो वरुण भी बात कर रहे थे वहां आप देखिए क्या हुआ किस तरह से बारीकी से काम हुआ है बारीकी से काम हुआ कि 6 लोगों को जो एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल में बिल्कुल जब 5 बजे समय खत्म होता है उस समय अपना पर्चा वापस ले लिया।
3: इन डेमोक्रेसी इफ यू जस्ट कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन व्हाई वी विल पीपल वोट फॉर यू।
4: ये देखिए
3: आप कभी आप एस आई आर की बात करते हैं, कभी एस आई आर के कारण चुनाव हार रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के कारण हार रहे हैं, पर अभी चुनाव लड़ते क्यों है? आप लड़िए ना। व्हाई यू आर कंप्लेनिंग इन द चैनल, व्हाई यू आर कंप्लेनिंग इन द मीडिया? If you are condemning Congress party for DMK, it means everybody is voting for opportunity. It's a double standard. नहीं हो सकता
4: रशीद गुप्ता,
3: you cannot question us all the time. We are winning election because people trust us, people have faith in our ideology. That's why we win elections after elections.
0: Okay.
3: It's not a coincidence that
0: Varun Singh
3: has won 7-6 out.
0: Varun Singh, it was managed. Even this election was managed. Varun Singh.
2: Let me tell you a simple thing, Padmaja. Here there were candidates from the MVA who couldn't even find people to sponsor them. मतलब साइन जो करते हैं सिग्नेटरी, दैट वाज द केस। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई गिव यू एन एग्जांपल, हंड्रेड कॉर्पोरेटर्स फ्रॉम कांग्रेस कुडंट एंड द कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस गॉट वोट जीरो वोट्स। सो यू नो ब्लेमिंग द ऑपोजिशन और ब्लेमिंग द पार्टी हु इज देयर इन द रूलिंग अलायंस ओवर हियर, I don't know. Today, the Shiv Sena candidate, Eknath Shinde, this candidate lost in Nasik. It is smart maneuvering. It is being said that it was a smart maneuvering by Devendra Fadnavis that he made a rebel candidate contest over there and he won and he defeated someone whose brother himself is an MLC over there from Eknath Shinde.
0: And then it was smart maneuvering by Eknath Shinde that he got that BJP rebel to join his party.
2: But let me tell you a very simple thing, that BJP rebel will be joining the Shiv Sena only and only if he gets a go-ahead from the high command over here in Maharashtra. NCP Thackeray was a BJP fellow who went in Pune and is now an MLC. Mm. You know, blame the ruling alliance. Mm. That is the best thing one should do.
0: But one thing I have to point out, the number one conspiracy theory, and this is where I want to bring in Rashid Kidwai, fine. Yes, the BJP, the NDA, they are now almost working like a juggernaut and anything that stands in the way is going to be demolished unless they put up a fight. The point is, for example, Sanjay Raut had said that Om Rajan Nimbalkar has agreed to join the NDA only if he gets a favorable verdict in his father's case. That favorable verdict did not happen. He received a setback from the special CBI court and yet he has joined, which makes one ask, somehow perhaps all of these conspiracy theories are also being floated because it's convenient. It's convenient to blame others. Om Rajan Nimbalkar is still with Eknath Shinde.
4: Absolutely. So the opposition is clumsy, opposition has leadership problem, opposition has a dynasty rule and that is eating the vitals of inner party democracy in lot of political parties, including the Congress. I'm saying it for the benefit of Rohan Gupta, who thinks that, you know, I would plug a pro-Congress line. They're, having said this, see why this is being, why 360, why this kind of MPs are being bought, matlab thok ke bhav mein kyun kharide ja rahe? Is there some kind of change of guard is taking place in Maharashtra at the center or some kind of big, you know, thing is happening? Therefore, you need a constitutional amendment to do this. It cannot be just for delimitation bill. Is there some kind of political, you know, thing that happening that we will see it in 2027?
0: Okay.
4: These are the things that need to be answered.
0: Okay, and ultimately, yes, you are absolutely right. These questions need to be answered. But the NDA, the BJP's argument is that it will be answered in the people's court when we go to the people in elections. But I want to end with a final visual because very interesting picture came today from the assembly where Rohit Pawar, Varun Singh, maybe you'd want to dwell on it for like 30 seconds before I thank you. Rohit Pawar and Eknath Shinde having a chat. I don't think Uddhav ji is going to be very happy with this picture. What was this conversation they were having?
2: I don't know. He probably was thanking for him visiting his niece's, his sister's wedding yesterday at PKC. Probably that could be one thing. But I don't want to get into the details what they were talking because I don't know what they were. But as I said, Rajneeti mein sharm ki jagah nahi hai, ideology ki jagah politicians ke liye nahi hai. And the only most important thing over here is if Uddhav Thackeray today wants his party to survive, then if not him, then Aditya Thackeray needs to hit the streets. He is to theek thaak, bhai. 34-35 साल का लड़का निकल जाए लोगों से मिले एंड सुनील शिंदे वॉट एवर हैपेंस इज नॉट गोइंग टू लीव हिम बिकॉज सुनील शिंदे इज हिज वेरी क्लोज फ्रेंड क्लोज एट ही लेफ्ट हिज सीट फॉर आदित्य ठाकरे सो एंड संजय पोटनिस ऑल्सो वोंट लीव हिम बिकॉज दे आर यू नो दीज आर द सीट्स वेयर यूबीटी हैज दिस पर्टिकुलर बेस सो दीज टू पीपल माइट नॉट लीव हिम रेस्ट ऑल आई डोंट नो
4: स्वागत योग्य बात है इसको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए ये तो शिष्टाचार
2: आपत्ति नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ रशीद जी आप मैं और रोहन और आनंद दुबे यहाँ लड़ेंगे कहेंगे की नहीं आइडियोलॉजी होनी चाहिए और ये सारे नेता वहां पर जाके हाथ मिला के
4: शादी ब्याह में मिल रहे तो भारतीय सभ्यता का अंग है इसमें क्या बुराई है
0: नहीं कोई बुराई नहीं है बट आनंद दुबे आई वॉन्ट टू लीव यू विद दीज पिक्चर्स आपके क्योंकि दुख खत्म ही नहीं हो रहा है एक बार नजर उठा के टीवी देख लीजिए रोहित पवार और एकनाथ शिंदे भी वहां पे गुफ्तगू कर रहे हैं लेट्स होप ये सिर्फ बीकेसी की बातें ही चल रही हैं कि शादी कितनी अच्छी थी इंतजाम कितने अच्छे थे सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड है ये कॉन्वर्सेशन बट सीरियस थॉट नीड्स टू बी गिवन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इफ पीपल अप्रूव वेल वी विल सी इट इन द पीपल्स कोर्ट थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस बिग स्टोरी द अदर बिग स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग ऑन द शो टुडे वॉज द डोनेशन given at the Ram Mandir in Ayodhya stolen? And if yes, then by who? This is a question that lakhs and crores of believers and Hindus across the globe are asking today. But how soon can one expect answers? Because this is a controversy that threatens to not just be a major embarrassment for the temple administration, but also a political ticking time bomb. The SIT set up by the UP government to probe this alleged theft may hand over its interim report this week to the Chief Minister. Meanwhile, a PIL on the issue has also been filed before the Allahabad High Court, but the court refused to grant urgent hearing on that today. The focus is now squarely on the working of the Temple Trust. Three main things that the SIT is looking at. On what basis were the hirings done of the people who worked there, especially those who were involved in counting the cash? Were people vetted properly before giving them access to the donations? What was the process to assess the value of the jewelry and valuables that were given as chadhava? Is there a possibility that their actual worth, the worth of the jewelry that's given, was underreported in temple records and the balance was siphoned off? And finally, the background and net worth of relatives of the people who are under the scanner. That background is also being scrutinized to check whether they suddenly seem to have come into wealth. Could the proceeds from the temple have been diverted to the relatives of those involved in the counting process? Be that as it may, the politics over this alleged theft is now peaking. The entire opposition has called it the biggest fraud perpetrated on Sanatanis across the world. The Samajwadi Party has trained its guns on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and Arvind Kejriwal has now vowed to visit the Ram Mandir this Friday in protest. While the BJP may brush this aside as an attempt to divide Hindus, the question still remains, is there any truth in allegations of theft from the Ram Mandir in Ayodhya? And if yes, who is going to be held responsible?
5: Sarkar ne SIT zarur banayi hai. लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे ये भी एक सवाल है बड़ा. सीसीटीवी के फुटेज गायब है जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो. ये साबित कर दिया है धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता. हमें उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी.
6: ये राम मंदिर कट्टादमेलू कूड़ा अल्लिंद कळतन आगता इदे 5000 कोटियष्टु दुड्डु अल्लिंद पोलागिदे अन्नतक्कंत रिपोर्ट बर्ता इदे. पूजारीने दुड्डु ओडिता इद्दारे. राम नाम जपो पराय माल अपना. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೋಟಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ.
7: ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಚೋರಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಘರ್ ಕಿ ಚೋರಿ ಔರ್ ಡಕೈತಿ ಜೊ ಹೈ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಖುಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಲೋಗೋ ಕಿ ಆಸ್ಥಾ ಕೆ ಊಪರ್ ಚೋಟ್ ಹೈ. ಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ಮಾಯಾ ಹೈ. ಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಜಾನೆ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಮಾಯನೆ ಹೈ ಬಿನಾ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೆ. ಉಸ್ಕಾ ಕಾನೂನಿ ಪಹಲೂ ಕ್ಯಾ ಹೈ ये तो वही बता सकते हैं. इससे पहले कोई नहीं बता सकता है.
8: वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यसूप पर गोली चली थी. कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। उनके आरोप पर कोई आपत्ति नहीं, आरोप लगाना उनका, अगर उनके पास कुछ है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो जो कुछ उनके पास आरोप के पीछे तथ्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए।

0: परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन पूरे परिवारजनों के प्रति। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां
1: 15 लोग हैं जो एक्चुअली डेड थे जब आए हैं, और जो हम लोग को देखने में पता चला है कि धुएं से सफोकेशन हो गया, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में एस्फिक्सिया कहते हैं, और उनका पंचनामा करके इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है।
2: बर्न पोजीशन नहीं थी, एस्फिक्सिया की वजह से,
1: धुएं से, वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है। तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं, बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके। एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गई हैं, बाकी थोड़ा स्टेबल हैं।
3: All right, let's now tell you all that we know so far when it comes to the Lucknow fire tragedy. First up, this fire broke out at a coaching center in Lucknow's Aliganj earlier this evening. Second, so far 15 people have been killed in the inferno. Now, this building, we told you that it only had residential permission, but it started using it as a commercial building. The third aspect is that the building housed a gaming hub and even a pet clinic, apart from being a coaching hub as well. Reports are also telling us that there was no fire safety NOC in this building. Apart from that, no fire exit as well. All routes were blocked, and that is why the rescue operation had to take place after breaking all those walls. Sources also telling us that the fire may have been caused through short circuit, but as we speak, an SIT team has been formed and the causes of the fire is still to be ascertained. Apart from that, a rupees 5 lakh ex gratia has been announced by the UP Chief Minister, and the Prime Minister also announced rupees 2 lakh ex gratia to those who have died in this inferno. All right, earlier I spoke with the UP Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, who was at the spot. Take a listen to what he had to say on this tragedy.
4: अभी बच्चे आहत हुए हैं, उनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 6 बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा, और हम सब यही घटना स्थल पर ही है। ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साफ था। ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था, कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे। उसमें आग लगी है, और क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के हिस्से में धुआं भर गया था, तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे, और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके। आगे क्योंकि आग ज्यादा थी, तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, एनडीआरएफ ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है। वहाँ पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखद घटना है, भयावह घटना है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। धुआं बाहर निकल रहा है, फर्नीचर बाहर किया जा रहा है। अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाए।
3: ऑलराइट, सो what are the big questions, because 15 people have lost their lives in this inferno. First up, of course, why was there no designated fire exit? There was no fire exit due to which people were trapped inside that building. Second, were portable fire extinguishers in place or not? Apart from that, were fire detection and alarm systems installed in place? Was there proper wiring and electrical safety or not? Were regular fire audits done or not? These are some of the main big questions that we're asking on NDTV after 15 people lost their lives in that inferno in Lucknow's Aliganj. And shifting our focus to another big story, it's an end to all speculations and buzz in Maharashtra politics, and a big boost to Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath.

0: धुएं से, वो धुआं इनहेल करते करते ना आदमी की सांस बंद हो जाती है। तो वो 15 लोग तो ऐसे हैं, बाकी जो 7 और बच्चे हैं उनमें से 2 घायल हुए हैं और उनको हम लोग इलाज कर रहे हैं उनके। एक उसमें से गंभीर घायल है क्योंकि दोनों लिम्स पैरालाइज हो गई हैं, बाकी थोड़ा स्टेबल हैं।
1: Now the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister was there at the spot when the fire broke out. He was seen crying and breaking down. Earlier, we spoke to him. His name is Brijesh Pathak, who was at the spot. Let's listen into what the minister had to say on the case.
2: रात में अभी बच्चे आहत हुए हैं, उनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 6 बच्चे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। घायल सभी खतरे से बाहर हैं और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा और हम सब यही घटना स्थल पर ही हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, नीचे कुत्ते का सामान बिकता था, पेट साफ था। ऊपर की बिल्डिंग में ये ऊपर तल्ले पर ये एनिमेशन सेंटर चलता था, कार्टून फिल्म बनाना बच्चों को सिखाते थे। उसमें आग लगी है और क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आगे के सिरे में धुआं भर गया था तो बच्चे धुएं के कारण पीछे भागे और पीछे वो धुएं के कारण बाहर निकल नहीं सके। आगे क्योंकि आग ज्यादा थी तो साइड की घर से दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड ने, NDRF ने घर में प्रवेश करके दूसरा रास्ता बना करके बच्चों को बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से KGMC ट्रामा सेंटर भेजा है। वहाँ पता चला है कि 14 बच्चे हताहत हुए हैं और 6 बच्चे घायल हैं। कोई भी दोषी से बचेगा नहीं, कड़ी कार्रवाई हुई। बहुत ही दुखद घटना है, भयावह घटना है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। धुआं बाहर निकल रहा है, फर्नीचर बाहर किया जा रहा है। अभी हम लोग घटना स्थल पर ही हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह पाएंगे।
1: And well, on to news from Maharashtra now. It's an end to all the speculations and buzz in Maharashtra politics. It is a big boost to Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. 6 out of the 9 Lok Sabha MPs from Team Uddhav Thackeray have joined the Eknath Shinde-led Shiv Sena in Mumbai. Addressing a press conference this evening, Eknath Shinde said, and I quote, "The 6 tigers are here. They have now all joined the real Shiv Sena family and I welcome them to the real Shiv Sena." There were 6 MPs who have jumped the ship are Om Raje Nibalkar, Sanjay Patil, Sanjay Jadhav, Sanjay Deshmukh, Nagesh Patil and others as well. Here is what Eknath Shinde said when he addressed the press conference earlier this evening.
3: Operation Tiger success. 2022 mein pehle operation hua tha. 2022 ke baad 40 MLA shuruaat mein the. Aaj हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटका सिक्सर। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन आत्म परीक्षण करना चाहिए, न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे, ये भी करके देखा उन्होंने। लेकिन ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं।
1: Three students in Karnataka were late for their re-NEET examination that were held yesterday. This triggered a political slugfest between the Congress and the BJP in Karnataka. Families of affected aspirants have blamed traffic congestion caused by a Congress event, alleging it delayed students from reaching examination centers on time. The students were denied entry for arriving late, visuals of some of which you see on your screens right now, with some also facing document-related issues. Meanwhile, a war of words, as always, has erupted between the BJP MP Tejaswi Surya, blaming the Congress rally for disrupting NEET aspirants, while